अरे आप भी डरते हो क्या? आप किससे डरते हो? बकवासपन, रूहें हवा के झोंके हैं, हमारे दिल के सुनहरे झोंके हैं। डरो मत, क्या समझे?